जाम ताकि धुमधाम राइड सफन नया इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइट छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful.

0: को ना थो जो वन
1: ना थो इनो उम्र उन्हीं वाला श्रीमान हो मोती ब्रो जंगल विवाह से किस हाकी सके बस इनो मुंबई कॉर्मा

पाकिस्तान समर्थित सशस्त्र समूहका कारण पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव, सार्कका विभिन्न शहरमा एकै पटक ड्रोन र मिसाइल आक्रमण।